0: लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए।
1: तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि तुर्क हलाल अहमद ने अपने इंसान दोस्त पर

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए बड़ी मसालहत का ऐलान किया और कहा है कि हमें तवक्को है कि यह मुआहदा इस हफ्ते के आखिर तक यूरोप में दस्तखत के लिए तैयार होगा। ट्रंप अपने 80वीं सालगिरह पर बरोज इतवार व्हाइट हाउस में एक केज फाइट की मेजबानी कर रहे हैं और कल बरोज जुमेरात जारी करदा बयान में उन्होंने कहा है कि दस्तखत की तकरीब में नायब सदर जे डी वेंस वाशिंगटन की नुमाइंदगी करेंगे। सदर ट्रंप का यह दावा इनके ईरान के खिलाफ ताज़ा हमलों का वादा करने और बाद में इन हमलों को मनसूख करने के बाद सामने आया है। ईरान की जानब से इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई और ट्रंप ने भी इन शिकों के बारे में कोई ठोस तफसीलात फराहम नहीं की जिन पर इत्तफाक हुआ है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए एक बड़े मुसालहती मुआहदे तक पहुंच गए हैं। दस्तावेजात आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएंगी और मुकम्मल होने की सूरत में कवी एहतमाल के मुताबिक यूरोप में इन पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। ताहम ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि गुज़श्ता 2 माह में ट्रंप 38 मरतबा मुआहदे के करीब होने का ऐलान कर चुके हैं। एजेंसी ने खबरदार किया है कि जब तक ईरान मुमकिन समझौते के बारे में ऐलान नहीं करता, इस मौजू पर ट्रंप का कोई भी बयान इनके गुज़श्ता बयान जैसा ही तसव्वुर किया जाएगा।
0: इसराइल गैर कानूनी बस्तियों की तोसी के लिए $51 मिलियन मुख्तस करते हैं। नाउ पीस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइल मकबूजा मल्क किनारे में 69 गैर कानूनी बस्तियों चौकियों की तमीनाती मनसूबे तैयार करने के लिए 152 मिलियन शेकल मुख्तस की है। आबादकारी मुखालिफ ग्रुप ने यह भी कहा हुकूमत नए आबादकारी मनसूबों के लिए 1 अरब शेकल से ज्यादा रकम मुख्तस करने की तैयारी कर रही है। ये फंड मकबूजा इलाकों में मनसूबाबंदी तोसी की कोशिश में मुआवनत करेगी। इन फंड मकबूजा इलाकों में तकरीबन 7,50,000 गैर कानूनी चौकियों में मुकीम है।
1: इटली के वजीर आजम मेलोनी ने इसराइल में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ पाबंदियों की हिमायत की है। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने गैर कानूनी इसराइली आबादकारों और कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवीर के खिलाफ पाबंदियों की हिमायत की और इसराइल के साथ यूरोपीय यूनियन के ताल्लुक का वसी तर जायजा लेने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट से खिताब में मेलोनी ने कहा है कि यूरोपीय कौंसिल को इसराइल के साथ ताल्लुक के मुस्तकबिल का जायजा लेना चाहिए और नफरत और इंतहा पसंदी को हवा देने वाले पुरतशद्दुद आबादकारों के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम की हिमायत करनी चाहिए। मेलोनी ने एक ऐसी बहस का मुतालबा किया है जो इटली और यूरोप के लिए इस मसले की तस्वीराती अहमियत को तस्लीम करे।
0: आलमी बैंक ने आलमी मईशत के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक इंतबाह जारी किया है। आलमी बैंक की जांच से जारी करता है जून के आलमी इक्तसादी इम्कान की रिपोर्ट में आलमी इक्तसादी तरक्की की शरह के तखमीन में कमी कर दी गई है। मशरक वस्ती में जारी तनाजात के साय तले तैयार करता मस्कुरा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में आलमी इक्तसादी तरक्की की शरह 2.9% थी तो रवा साल इसके 2.5% तक रहने का इम्कान है। शरह कोरोना वायरस की वबा के आगाज के बाद से अब तक की कम तरीन सतह है। रिपोर्ट में तवनाई की मंडियों में पाए जाने वाले खतरा की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। अपने उसमें सप्लाई रुकावटों के बायस ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल औस कीमत रवा साल $94 तक पहुंचने आलमी इंफ्लेशन दर की शरह 4% तक बढ़ने की पेशगोई की गई है।